FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि तदनुसार 21 मई सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं। चिंतन समय कितना विचित्र होता है। अगर समय अपने साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, किंतु यही समय अगर विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की आदत है कि बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखना। संबंधी मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं, यश मान बुरे समय में चला जाता है। व्यक्ति धन संचय करता है ताकि बुरे समय में काम आएगा, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि धन संचय किया हुआ नहीं काम आता। सद्कर्म करते रहो, सद्कर्म ही आपके बुरे समय में काम आते हैं। या फिर बुरा समय आता ही नहीं जब हम अच्छे कर्म करते हैं।

प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ है और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता, हमारे भीतर ही समाया है। बस प्रभु प्रेम से, प्रभु की कृपा से और साधना द्वारा हमें उसे प्राप्त करना है।

भगवान कण कण में व्याप्त हैं, कौन ऐसा है जो नहीं जानता। लेकिन पता हो जाना प्राप्ति होना नहीं है। जिस तरह दूध में घी है सब जानते हैं, लेकिन पाने के लिए उसे विधि के अनुसार निकालना पड़ता है। ज्ञान के द्वारा भगवान का पता लगता है। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से होती है, साधना और सुमिरन से होती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आज सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। और सुप्रभात कार्यक्रम में आज जानकारी के विषय रहेंगे सांस्कृतिक विविधता, संवाद और विकास के लिए विश्व दिवस पर जानकारी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बात करेंगे। और पर्यावरण में आज हम बात करेंगे गुंजन पक्षी के बारे में। लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुनेंगे सुबह 7:40 पर। सुबह 9:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रसारित किया जाएगा। दिन में 12:00 का समय रहता है सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का। और 12:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम मिंजरा। युवा मंच कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:30 पर कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। और 7:10 पर किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10:00 हिमाचली गीत, 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:18 पर शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:45 पर रात्रि को समाचार संध्या, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। छह 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्र यात्रायाः पंचमं अंतिमं च चरणं सफलतया संपाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषि, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तंत्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे नीर अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिकविनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीनसभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 सप्तविंशतितमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रिकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानं अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः संभवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said, India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force or BSF for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. At Nobana yesterday, Chief Minister Shubhendu Adhikari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrance. President of Cyprus Nikos Christodoulidis, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. President Christodoulidis was received by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis at the Mumbai airport. He was also accorded a ceremonial welcome. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranthir Jaiswal, said, President Christodoulidis' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he's looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is the world's oldest. So the U.S. looks forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. The U.S. will commemorate and celebrate the 250th anniversary of the signing of the Declaration of Independence on 4th of July. Mr. Rubio will be on a four-day visit to India from the 23rd of this month. This will be his first visit to India. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground Eden Gardens last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest, that is 45 runs, while Rovman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुप्रभात कार्यक्रम।

तो श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुप्रभात कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस पर। हर वर्ष ये दिन 21 मई को यानी आज के दिन मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में समृद्ध संस्कृतियों का जश्न मनाने और शांति तथा सतत विकास के लिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, लोगों के बीच मतभेदों को कम करके आपसी सम्मान, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को विकसित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। यूनेस्को के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। दुनिया की लुप्त प्राय भाषाओं, कलाओं और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद सुनते हैं गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से दूर रखना है, आम जनता को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और देश में शांति तथा एकता को बढ़ावा देना है।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में नामित किया गया था ताकि देश उनके बलिदान को याद रख सके। आतंकवाद के कारण आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले नुकसान और हिंसा की विचारधारा को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों में चेतना जगाना ही आज के इस दिन को मनाने का, यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने का उद्देश्य है।

स्वागत है आपका एक बार फिर से सुप्रभात कार्यक्रम में। श्रोताओ, आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 21 मई को ये दिन मनाया जाता है। पहले ये दिवस विश्वभर में हर साल 15 दिवस को मनाया जाता था। 15 दिसंबर को विभिन्न चाय उत्पादक देशों द्वारा ये दिन मनाया जाता था। भारत की सिफारिश पर अब संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया है। अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन का समय मई में ही शुरू होता है। चाय उत्पादन और प्रसंस्करण विकासशील देशों में लाखों परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है और लाखों गरीब परिवारों के लिए निर्वाह का मुख्य साधन है, जो कम से कम विकसित देशों में रहते हैं। चाय उद्योग कुछ गरीब देशों के लिए आय और निर्यात राजस्व का एक मुख्य स्रोत है और श्रम गहन क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से दूरस्थ और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। सिर्फ यही नहीं, चाय विकासशील देशों में ग्रामीण विकास, गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर किसी के दैनिक जीवन में चाय के महत्व को बताता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दुनिया भर में चाय के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब तक के पूरे इतिहास में चाय एक मूल्यवान आर्थिक वस्तु रही है। इस दिन का लक्ष्य बेहतर व्यापार प्रथाओं और काम की परिस्थितियों को बढ़ावा देने के साथ साथ चाय के नैतिक और टिकाऊ उत्पादन पर केंद्रित है। इस दिन का उद्देश्य भूख और गरीबी से लड़ने के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। चाय के विकास में गहन देखभाल और प्रयास की आवश्यकता होती है।

सुप्रभात कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं चाय दिवस पर। चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया था। ऐसा कहा जाता है कि चीन के एक राजा शैन नुंग के सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया था। उसमें गलती से चाय की सूखी पत्तियां गिर गई और उस पानी का रंग बदल गया। राजा ने जब इस पेय को पिया तो उसे ये नया स्वाद बेहद पसंद आया और तब से ही चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी के बाद चाय ऐसा पेय पदार्थ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय केवल सर्दियों में दवाई की तरह पी जाती थी। इसे रोज़ पीने की परंपरा भारत में ही शुरू हुई है। भारत में 1835 से चाय पीने की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि 1500 से ज़्यादा प्रकार की चाय होती है, जिसमें काली, हरी, सफ़ेद और पीली चाय काफ़ी प्रचलित है। अगर चाय की पत्तियों को कुछ देर पानी में भिगो दें तो उसमें गंध घर में फैलाएं, उसकी गंध तो ये प्राकृतिक ऑल आउट का काम करता है और मच्छर भगा देता है। चाय अफगानिस्तान और ईरान का राष्ट्रीय पेय है। इंग्लैंड के लोग रोज़ 16 करोड़ चाय के कप पीते हैं। इस हिसाब से साल में 60 अरब कप चाय के वो पी जाते हैं। काली चाय का उपयोग कुल चाय का 75% है। भारत में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम में होता है और चाय ही असम का राष्ट्रीय पेय भी है। चाय उत्पादन में चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। ब्लैक टी यानी काली चाय की सबसे ज़्यादा खपत भारत में ही होती है। अमेरिका में 80% चाय की खपत आइस टी के फॉर्म में होती है। तुर्की का हर व्यक्ति रोज़ 10 कप चाय पी लेता है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो उम्र बढ़ने से आपकी रक्षा करते हैं। खाली पेट ब्लैक टी पीने से पेट फूलता है और एसिडिटी और अपच हो सकती है। मतलब कि अगर चाय पीने के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। खाली पेट चाय पीने से आपकी भूख प्रभावित होती है या फिर भूख लगना ही बंद हो जाती है। ऐसा होने पर आप ज़रूरी पोषण से वंचित रह जाते हैं। अगर चाय अत्यधिक उबाली गई हो तो अधिक नुकसानदायक हो जाती है। चाय में एक एल्थेनाइन नाम का इंग्रेडिएंट होता है जो आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेस कम करता है, बुद्धि विकास करता है और आपको कुछ देर तक नींद नहीं लगने देता है। तो ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं गीत।

श्रोताओ, गुंजन पक्षी को हमिंग बर्ड भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। इनके पंखों के बहुत तेजी से फड़फड़ाने की एक विशेष प्रकार की गुंजन या भिन भिनाने की आवाज़ पैदा होती है, जिसके कारण इसका नाम गुंजन पक्षी पड़ा है। गुंजन पक्षी का आकार बहुत छोटा होता है, जो लगभग सामान्यतः 7 से 13 सेंटीमीटर तक होता है। उड़ने की अद्भुत क्षमता है। ये एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो आगे के साथ साथ पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं। ये हवा में एक ही जगह पर स्थिर होकर भी उड़ सकते हैं। गुंजन पक्षी अपने पंखों को लगभग 1 सेकंड में 10 से 80 बार फड़फड़ाते हैं। ये मुख्य रूप से फूलों का रस पीते हैं और उड़ते उड़ते ही फूलों से रस चूस लेते हैं। ऊर्जा के लिए ये छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। पैर और चलना, इनके पैर बहुत छोटे और कमज़ोर होते हैं, इसलिए ये ज़मीन पर नहीं चल सकते हैं। ये केवल टहनियों पर बैठने या फुदकने के लिए अपने पैरों का उपयोग करते हैं। उड़ते समय इनका दिल 1200 बार प्रति मिनट से भी ज़्यादा धड़क सकता है। गुंजन पक्षियों की लगभग 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये पक्षी मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। गुंजन पक्षी हवा में उड़ते हुए अपना भोजन करता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग।

0: मई धमाका आ गया है। आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा, इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। अब लीजिए सुनिए मान सिंह को।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 8 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 9:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: के आया मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति बद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
6: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
7: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering, and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
9: More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to multilateralism and global food security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
9: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several such channels become highly active in the run-up to major exams, circulating fake paper leak claims, clickbait content and unverified information that trigger panic, anxiety and confusion among students and parents. It was highlighted that many such links redirect users to automated bots and fake groups designed to amplify misinformation. In West Bengal, re-polling has begun for the Falta Assembly constituency in South 24 Parganas district. Voting, which started at 7 a.m., will conclude at 6 p.m. The Election Commission had ordered a complete re-poll in Falta Assembly constituency, scrapping the voting that was held on 29th of April following multiple reports of irregularities, including voter intimidation, unauthorized presence inside polling booths, and possible tampering with voting machines. A total of 6 candidates are in the fray, including 2 independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. BJP's candidate is Dibangshu Panda. Congress has fielded Abdul Razak Molla, while the CPIM has fielded Shambhu Nath Kurmi. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha for the latest update. Kalyan, what's the latest update that you have?
6: Sarah, the latest update is the voting is going on peacefully and no reports of violence or any untoward incident came in, and that this week, this candidate Jahangir Khan declared that he would not contest in the election.

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: श्रोताओ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से एक ही फिल्म में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नूरी फिल्म के कुछ गीत। नूरी फिल्म 11 मई 1979 को रिलीज हुई एक बेहद लोकप्रिय और मार्मिक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के फिल्मकार यश चोपड़ा द्वारा ये फिल्म निर्मित और मनमोहन कृष्ण द्वारा निर्देशित है। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में नूरी फिल्म का ये गीत।

0: May drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
1: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry! Offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: नूरी फिल्म का संगीत इसके सबसे मजबूत पहलुओं में से एक था। इसका संगीत मशहूर संगीतकार खयाम ने दिया और इसके गीत जान निसार अख्तर, मजरूह सुल्तानपुरी और नक्श लायलपुरी ने लिखे थे। नूरी फिल्म के गाने आज भी बहुत अधिक पसंद किए जाते हैं।

नूरी फिल्म के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म में। ये फिल्म 1989 की बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार थी। ये फिल्म चीन में भी बहुत बड़ी सफल भारतीय फिल्म बनी थी। इस फिल्म के लिए पूनम ढिल्लो को बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म तो आइए सुनते हैं इसकी नूरी फिल्म का एक और गीत महेंद्र कपूर और जगजीत कौर की आवाज़ों में।

महेंद्र कपूर, जगजीत कौर और साथियों की आवाज़ों में गाए इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। तो आज आप सुन रहे थे एक ही फिल्म नूरी के कुछ चुनिंदा गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। तो गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत, नमस्कार। और मैं हूँ आज के इस कार्यक्रम में नर्मदा। झूम के जब आ जाता है सावन तेरी यादों का, झूम के जब आ जाता है सावन तेरी यादों का, जख्मे दिल महका जाता है सावन तेरी यादों का। जज्बे इश्क सलामत हो तो कोई रुत की कैद नहीं, जज्बे इश्क सलामत हो तो कोई रुत की कैद नहीं, बेमौसम भी आ जाता है सावन तेरी यादों का।

दोस्तों, अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे और मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। खट्टी मीठी यादों के साथ मैं हूं नर्मदा, आज आपके साथ खट्टी मीठी यादों में लिपटे हुए कुछ गीतों के साथ।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, और सफ़र है यादों का। तो देखिए साहब, कि किसी की याद आने के लिए मौसम का खूबसूरत होना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि याद तो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती है। हम तन्हा हुए नहीं कि यादें हाजिर, हाँ यादें किसी की भी हों, कोई भी हो सकता है। इस कदर तेरी याद को मुझसे है हमदर्दी, इस कदर तेरी याद को मुझसे है हमदर्दी, देखती है तन्हा मुझे, देखती है तन्हा मुझे तो चली आती है।

श्रोताओं, गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और इस कार्यक्रम के शेष गीत हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: 10 लाख किलो।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दे रही है राज्य सरकार, भाजपा पर शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी करने का लगाया आरोप। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज सातवां दिन। नगर निगम प्रशासन ने 41 कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमता, नवाचार व स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान भी किया है। धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित ना रहें, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान

0: 54 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। पहले चरण के 79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का रंग हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्के नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। उधर कांगड़ा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पंचायत चुनावों के लिए 26 मई को मतदान होगा और जिला प्रशासन ने इस बार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है।
1: पूरे जिले भर में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाएगा। बड़ा बंगाल में भी इस बार एक हम पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा पंचायत का चुनाव गर्मियों में हो रहा है और काफ़ी लोग बड़ा बंगाल में माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो लोग भी मत अपने मत के उपयोग के अधिकार से वंचित ना रहे। इस दृष्टि से ये मामला माननीय आयोग के समक्ष रखा गया था और माननीय आयोग ने निर्देश दिया कि हमने वहाँ पर भी हमें पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करना है।
0: देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की स्वीकृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। इस बीच हड़ताल पर बैठे सहायक कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 41 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी को पत्र जारी कर 270 आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने इस कार्रवाई को कर्मचारियों के साथ धोखा करार दिया है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीते कल ऊना में सर्वाधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के मैदानी जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। प्रदेश में अप्रैल से सितंबर तक मिलने वाला लुंगड़ू अपने विशेष औषधीय गुणों, अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण विशेष महत्व रखता है। इसे कई क्षेत्रों में लिंगड़ तथा खसरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डिप्लाजियम मैक्सिमम है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता के अनुसार ये पौधा केवल एक मौसमी सब्जी नहीं बल्कि पहाड़ी संस्कृति, परंपरा और खान पान की जीवंत पहचान है।
2: अपने औषधीय गुणों, अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण विशेष महत्व रखता है। इसे कई क्षेत्रों में लिंगड़ तथा खसरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, फोलिक एसिड और फाइबर से भरपूर यह पौधा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। लुंगड़ू केवल स्वाद और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहाड़ी लोगों के लिए अतिरिक्त आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन है। आज लुंगड़ू का मदरा भी कांगड़ी धाम और विभिन्न सामाजिक समारोहों का महत्वपूर्ण

0: हिस्सा बनता जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किया गया इसका अचार भी लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। हिमाचल की वादियों में उगने वाला लुंगड़ू सचमुच प्रकृति का ऐसा उपहार है जो स्वाद, स्वास्थ्य, संस्कृति और आजीविका चारों को एक साथ जोड़ता है। प्रकृति का ये अनमोल उपहार न केवल हिमाचल की पारंपरिक विरासत को जीवित रखे हुए है, बल्कि पहाड़ी लोगों की मेहनत, संस्कृति और आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी भी बयां करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: शिमला जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा जिले के शिलारू में 24 मई को एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। संघ के महासचिव सीपी मेहता ने बताया कि इनमें अंडर 20 आयु वर्ग के पुरुष व महिला खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से समय पर पंजीकरण करवाने की अपील की है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, विजिलेंस को आरटीआई की दायरे से बाहर करने की अधिसूचना पर रोक। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, हिमाचल के कई जिलों में ड्राई होने लगे पेट्रोल पंप। मुख्यमंत्री के हवाले से हिमाचल दस्तक ने सुर्खी दी है, भाजपा का फोकस संस्थान खोलना, हमारा गुणात्मक शिक्षा। हिमाचल एंट्री टैक्स के खिलाफ 1 जून को 55 एग्जिट पॉइंट 4 घंटे रहेंगे जाम। शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है, संघर्षकारी संगठनों ने जारी किया रेसिप्रोकल टैक्स ड्राफ्ट। दैनिक जागरण की एक खबर है, मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में सरकार व संजय गुप्ता को नोटिस। मौसम पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, ऊना में 44 डिग्री और शिमला में 30 डिग्री के साथ इस सीजन के सबसे गर्म दिन, कल से बारिश संभव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दे रही है राज्य सरकार, भाजपा पर शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन, नगर निगम प्रशासन ने 41 कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गीतांजलि कार्यक्रम।

श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आज आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और हम बात कर रहे हैं यादों पे। तो अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर यूं मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा और तुम बहुत देर तक याद आते रहे। यादों से दामन छुड़ाकर चैन की सांस ली ही थी कि बस किसी ने फिर से गुजरा जमाना याद दिला दिया, और यादों से घिरकर कभी रो दिए तो कभी हंस दिए।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। TNC अप्लाई।

तन्हाई का एहसास दिलाने के लिए ढूंढ लेती हूँ तेरी यादों के जालिम साए। तन्हाई का एहसास दिलाने के लिए ढूंढ लेती हूँ तेरी यादों के जालिम साए। और दीवारों से बातें मैं तेरी करती हूँ, और दीवारों से बातें मैं तेरी करती हूँ। लोग दीवानी ना समझे तो क्या समझे।

तो श्रोताओं, चाहे किसी का मिलना नामुमकिन ही सही, लेकिन उसकी यादों में तो जिंदगी बिताई जा सकती है ना। तुम्हारी यादों के जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी यादों के जब जख्म भरने लगते हैं, तो किसी बहाने से हम तुम्हें याद करने लगते हैं।

दोस्तों, वक्त के गुजरते ही हर बात याद ही तो बन जाती है। अब देखिए ना, हमारी और आपकी ये आज की मुलाकात भी तो एक याद बन गई। भुलाई नहीं जाएंगी आपसे ये बातें, भुलाई नहीं जाएंगी आपसे ये बातें, बहुत याद आएंगे हमें याद रखना। तो इस गीत के साथ ही आज का गीतांजलि कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

वारिस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में। शर्मीली फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में।

0: मई धमाका आ गया है। आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
3: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
2: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
3: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
2: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
3: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आओ प्यार करें से।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं और फिल्म है सिलसिला।

लता मंगेशकर और की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली लोकगीत।

श्रोतो, संदेश कुमार की आवाज में अभी आपने सुना ये लोकगीत। अगला लोकगीत सुनिए जन्मजय सिंह की आवाज में।

0: अब घर लाइए मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ।
1: न्यू ऑल्टो K10 अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, साथ ही ESP हिल होल्ड असिस्ट और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स।
0: और अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू ₹72,100 के बेनिफिट्स, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी।
1: ऑल्टो K10 विद बेस्ट इन क्लास माइलेज, बुक नाउ एट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरेना शोरूम।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
2: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: श्रोतो, आप सुन रहे हैं हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। अगला लोकगीत सुनिए प्रदीप परदेसी की आवाज में।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीत। अगला लोकगीत सुनिए इंदर राज की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली लोकगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब प्रदेश के बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती है, ताकि उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है, ताकि बच्चों को अपने ही क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्के नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। उधर कांगड़ा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पंचायत चुनावों के लिए 26 मई को मतदान होगा और जिला प्रशासन ने इस बार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली जाएगी।
1: जिले भर में तीन चरणों में मतदान की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाएगा। बड़ा भंगाल में भी इस बार एक हम पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा पंचायत का चुनाव गर्मियों में हो रहा है और काफ़ी लोग बड़ा भंगाल में माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो लोग भी मत अपने मत के उपयोग के अधिकार से वंचित ना रहे। इस दृष्टि से ये मामला माननीय आयोग के समक्ष रखा गया था और माननीय आयोग ने निर्देश दिया कि हमने वहाँ पर भी हमें पोलिंग स्टेशन इस्टाब्लिश करना है।
0: शिमला में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का आज सातवां दिन है। इस बीच हड़ताल पर बैठे सहायक कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 41 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी को पत्र जारी कर 270 आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।
2: बड़े अच्छे माहौल में हमारी बैठक भी हुई है और सब ने इस चीज़ को माना भी है कि हम आपके परिवार हैं, तो मैं परिवार का एज ए मुखिया होने के नाते मैंने इस चीज़ को समझा भी और अब हम अपने आप को इस कार्य को जल्द से जल्द इसको सुलझा भी लेंगे।
0: वहीं दूसरी ओर सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यदि निगम प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
3: अगर सुबह 12 बजे से पहले बैठक का आयोजन करके समाधान की ओर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से अगले चरण के आंदोलन का कल हम ऐलान करेंगे, जो इससे ज्यादा उग्र होगा और वो जरूर प्रबंधन को और प्रशासन जो है एनसी का उसको दिक्कत खड़ी करेगा। उम्मीद ये है ये बातचीत का दरवाजा खोलेंगे और मुद्दों का समाधान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान मंडी के निवासी व एनएचपीसी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। इस उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
4: इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में स्वच्छ ऊर्जा, जल विद्युत, हरित विकास, खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। भूपेंद्र गुप्ता की भागीदारी, भारत के ऊर्जा विकास में उनकी विशेषज्ञता और एनएचपीसी की बढ़ती वैश्विक भूमिका की बड़ी पहचान माना जा रहा है। मंडी के विजय हाई स्कूल के पूर्व छात्र भूपेंद्र गुप्ता पिछले 3 दशकों से देश के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीष सूद।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीते कल ऊना में सर्वाधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के मैदानी जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं पंजाबी गीत।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
2: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
2: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो। आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ। जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ, सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन।
1: हिरन। दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
8: हाँ।
7: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
9: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ।
5: अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़।
6: इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
9: बिल्कुल सही कहा अटकू।
7: इसे काटो।
10: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
7: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
11: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
6: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
7: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
5: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
7: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
6: अरे वाह, क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
5: वो उसे काटने लगे।
10: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
6: अच्छा ठीक है,
7: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
5: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
9: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?

0: बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
1: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
2: अरे वाह अटकू मटकू,
1: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
3: पेड़ हमारे
4: दोस्त हैं।
3: जीवन में हरियाली लाओ,
4: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
5: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दिन के 12 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम सैनिकों के लिए का।

हमराज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सैनिक भाइयों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का ये गीत।

आंखें फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। सैनिक भाइयों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं नीला आकाश फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी ये गीत आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। सैनिक भाइयों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मेरे सनम फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिंजरा।

मिंजरा कार्यक्रम सुनने वालियां भेणा जो नमस्ते कने सारियां जो राम राम। भेणो अज असां बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तुसां कने सांझा करनी है। इसा चीज़ा दे क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं जिन्हां दे असां आदि हो चुके हैं। भेणो हर चीज़ का जाली आविष्कार हुंदा तां असां फायदे वास्ते ही हुंदा। असां दा जीवन असां दी दिनचर्या होर आसान होई आए पर जाली ज़्यादा इन्हां चीज़ां का इस्तेमाल हुंदा तां असां वधिया चीज़ां भी नुकसान दिंदियां। जी भेणो तुसा सही सोचा करदे हन मैं क्या जानकारी तुसा कन्ने सांझा करनी है। भेणो असा गल करनी है स्मार्टफोन दी मोबाइल फोन दी। भेणो स्मार्टफोन बनिया सुविधा वास्ते ए असा सब जानदे हन। मोबाइल खराब चीज़ नहीं है। कोई नई चीज़ सीखनी असा होए तो पढ़ाई वास्ते या अपने व्यवसाय लई तो असा इसका इस्तेमाल करते हैं। आसान तरीके कन्ने जानकारी मिली जाती है किताबों की पढ़ाई दे कन्ने कन्ने स्मार्टफोन भी असा चला करते हैं। कोई चीज़ समझ ना होए तो इस स्मार्टफोन की मदद कन्ने असा इसकी मदद ले सकते हैं। आज असा खुद भी वधिया बनना चाह करते हैं मोबाइल फोन के जरिए सब कुछ सीखी करी। भेणो काफ़ी मददगार साबित भी हुआ करता है। पहले जड़ी जानकारी कई दिन बाद या कई घंटे बाद मिलती थी आज एक दो सेकंड दे अंदर असा हासिल करा करते हैं। भेणो जिन्हों के घर ब्याह शादी होंगी थी तो कई दिन रिश्तेदारों जो न्योता देने वास्ते जाते थे आज एक फोन के जरिए एक मैसेज के जरिए यह काम आसान हो गया। कई समझदार बच्चे पढ़ाई भी इस दे जरिए करा करते हैं। कोई दुख तकलीफ या बीमारी असा कोई हो जाती है तो जोड़े सदस्य घर से दूर रहते हैं तिना तक संदेश पहुँचाई सकते हैं। तो भेणो अज महिला उद्यमी अपना व्यवसाय अपना मोबाइल के जरिए जे कर तिना बनिया समान कुथू बेचना है कुथू भेजना है सब स्मार्टफोन की मदद कन्ने होआ करदा है। अज ज़्यादा भुगतान जड़ा सा डिजिटल होआ करदा है। बैंक च लंबी लंबी लाइना च इंतजार असा जो नहीं करना पौंदा है। तो भेणो गल्लां जड़ियां सै होर भी असा तुहां कन्ने करनियां पर पहले इसते पहले हां सुनाना प्यारा दिया लोक गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

लोकगीत कने विज्ञापन ते बाद असा कार्यक्रम च फिरी हाजिर हन। कनिस्ते पहले गल हुआ कर दी थी स्मार्टफोन दी, तो बहनों छात्र अपनी सुविधा अनुसार पढ़ने वाली सामग्री समझने कने दोहराने दा तीना जो अवसर मिलता है। इसते अलावा बात संवाद असा करना सीखी लेंदे न, नौकरी ले बड़ी सारी जानकारियां असा जो मोबाइल दे जरिए मिला कर दी हैं, जेड़ी काफ़ी मददगार जड़ी से साबित हुआ कर दी। तो मैडम अक्सर बच्चों जो आदत होंगी कि पढ़ते पढ़ते तीन जो नींदर आई जाती, कने से मोबाइल सिराने या तकिए दे नीचे या बिस्तर पर रखी दे, कने ये असां दे शरीर वास्ते नुकसान दे होंदा। इस बीच निकलने वाली जड़ी रेडिएशन ब्लू लाइट असां वास्ते ठीक नहीं है। बार बार मैसेज नोटिफिकेशन दे निंदर भी जड़ी से चली आती है। तो मोबाइल सोंदे समय जड़ा सा बिस्तर ते 3 ते 4 फिट या 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो बहनों असां कई कई घंटे मोबाइल चलाते पर बैठने का कोई भी तरीका अस अपना लेंदे न, ये तरीके असां दे शरीरे जो गर्दन जो बाहीं जो नुकसान देंदे न, अक्खीं दी रोशनी भी असां दी चली जांदी है कई बारी, कने इसका असर ज़्यादा अक्खीं दी रोशनी पर पौंदा। इस वास्ते कुछ गल्लां दा ध्यान रखना जरूरी होंदा है। तो बहनों अज बच्चे महिला पुरुष नौजवान बुजुर्ग सबना जो स्मार्टफोन की आदत पई है, कने असा चाहे घर बैठे होन, कुसी ब्याह शादी या फंक्शन च गए होन, या कुसी दे घरे गए होन, या बस ट्रेन जहाज दा इंतजार करा करदे होन, असा दी एक वारी भी नज़र मोबाइल ते नहीं हटदी। असा जो लगदा कि कोई मैसेज कोई रील कोई न्यूज़ दिखने बगैर जे ना रही जा, इस करी बार बार मोबाइल च स्क्रोल करदे रहिंदे न। तो बहनों यही एक आदत बनी जाती, पहले आदत असा लगाते कने फिर आदत असा जो लगाती। तो बहन तुसा कई बारी दिखा होना कि भी 10-12 बहन की जी गपशप चली हो तो 1-2 बहन मोबाइल चला कर दी होंदियां, कने गल्लां भी सुना कर दी होंदियां। तो मैं सही बोला करदी ना भी असा इं करा करते हैं, कने इं ही होया करता कहे कि भी इन चीज़ों की आदत असा जो बनी चुकी है। तो बहनो अज असा टीवी भी घट दिखते न, समाचार भी घट पढ़ते न, किताबा पढ़ना तो अस छड़ी दी थी न, सारे का सारा ध्यान मोबाइल पर जड़ा सा रिया करता। अगर हाँ ये गल्ला गलांदे भी हैं तो बोलते कि भाई मोबाइल च अजकल सारी जानकारी जड़ी से असा मिलिया करती है। तो बहनो मोबाइल का इस्तेमाल जानकारी पढ़ाई या कम करने वास्ते किया जाए तो वधिया, पर समय की बर्बादी फालतू की चीज़ा दिखना जिन्हों का कोई फायदा ही नहीं है, जिन्हों का कोई मतलब नहीं है। तो बहनों मोबाइल दे स्मार्टफोन दे इतने फायदे हैं, घर बैठे कुछ भी असा बुकिंग करी सकते हैं, बसा दी ट्रेना दी हवाई जहाज़ दी, कने जेड़े यात्रा करने दे शौकीन हैं सह रहने वास्ते भी अपना कोई होटल बुक कर सकते हैं, व्हीकल वास्ते हाँ बुकिंग कर सकते हैं, गड्डी वास्ते हाँ बुकिंग कर सकते हैं। असा इन गल्लां वास्ते कुछ भी बुकिंग दफ्तर च असा जाना नहीं पौंदा, एक तो हाँ समय बची आता, कने काम भी असा दे हो जाते। कुछ ही बहना घूमने फिरने की योजना बना कर दी हैं, कुछ प्लैनिंग बना करा कर दी हैं, तो असा एक मैसेज कने सारी तैयारी असा करी लेंदे हैं। अगर समय नहीं है तो घरे बैठी कने सारा समान ऑनलाइन हम मंगाई सकते हैं एक स्मार्टफोन के जरिए। पर बहनों मन तरोताज़ा करने वास्ते असा म्यूजिक भी धीमी आवाज़ असा सुनी सकते हैं, ये भी बड़े अच्छे फायदे हैं। लंबे समय च लंबे सफर च असा जाना हो लंबे समय तीन तो फिर अहाँ रेडियो भी सुनी सकते हैं। तो बहनों फायदे तो बड़े हैं पर कई बार असा फायदे घट नुकसान ज़्यादा कराई लेंदे न। कुछ भी साइट ते समान मंगाई करी सह क्वालिटी वधिया भी नहीं निकलता, कने बिना जाने पहचाने कोई भी लिंक अहें आई जाता है, या फिर लॉटरी के नाएं पर असा कने असा ठगी दे जेड़े शिकार हो जाते हैं। मैं जिन्हें चीज़ों की जानकारी ना हो कोई भी मैसेज द्वारा कोई भी लिंक आता है सह बिना जाने पहचाने असा ओपन नहीं करना, चाहे कुछ ते भी फोन होए बैंक की जानकारी मोबाइल के जरिए कुछ जो नहीं देनी है, मैसेज के जरिए आधार नंबर बैंक डिटेल असा कुछ जो सेंड नहीं करनी है। तो बहन कुछ गल्लां वास्ते असा जो स्मार्टफोन कन्ने आपू भी स्मार्ट बनना पौना है। तो अजकल मोबाइल फोन के जरिए इतने सारे स्कैम होआ करते हैं कि बैंक खाते के सारे पैसे जड़े से उड़िया करते हैं। तो बहन ये नहीं है कि भाई घट पढ़े ही नुकसान करी लेंदे, अज पढ़े लिखे भी नौकरी पेशे वाले भी नुकसान करी लिया करते हैं। तो बहन कुछ गल्लां जड़ियां से गोपनीय रखना बड़ी जरूरी होंदियां,
ज़्यादा मोबाइल दिखने ते बच्चियां पर भी नकारात्मक प्रभाव पौंदा है। तिन्हां दी यादाश्त एक तो कमजोर होंदी है, तनाव च सह रहिंदे ने, कने नींदर ते इन्हां च घट आउंदी है, कने स्क्रीन दी जिहड़ी नीली रोशनी होंदी है सह भी असां दे दिमागे च मेलाटोनिक जिहड़ा हारमोन है तिस च घट करिंदी है। तो बहणों हुण सुणांदे ने इक होर लोक गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: लोकगीत कर विज्ञापन के बाद कार्यक्रम च असां फिरी हाजिर हैं बेणो। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस की हूँ असं गल करनी है। तो बेणो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार चाय दिवस हर साल 21 मई जो मनाया जाता। चेन ATN इसके प्रवर्तक थे। इस दिन जो मनाने का उद्देश्य चाय के सांस्कृतिक महत्व, स्वास्थ्य लाभ, इसके आर्थिक योगदान, जेडे चाय श्रमिक हैं तिना की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन चाय उत्पादन ग्रामीण विकास च इसकी भूमिका का जश्न मनाना है। तो बेड़ो पहले ये दिन जोड़ा सा 15 दिसंबर जो मनाया जाता था, पर 2019 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई जो ये दिन मनाने की घोषणा की। पहली बारी 2020 दिवस जोड़ सा मई महीने जोड़ सा मनाना शुरू किया। बेड़ो चाय दिवस पानी के बाद दुनिया का सब तो लोकप्रिय पेय पदार्थ है। ये विकासशील देशों च गरीबी उन्मूलन कने कमाई का प्रमुख स्रोत है। भारत देश चाय का सब तो बड़ा उत्पादक कने सब तो बड़ा उपभोक्ता भी है। ये सिर्फ चाय एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दा या संस्कृति का हिस्सा, काफ़ी लोगों जो ये रोज़गार भी दिता है। चाय उद्योग असें रोज़गार मिलता है, खासकर महिला जो। बेणो हुण गल करनी है गेहूं भंडारण दी। गेहूं दा रख रखाव किया करना है? तो बेणो कणक इस मौसम दी फसल है, साले दा राशन असां लेना हुंदा है। तो बेणो खूब मेहनत करदियां हैं, पर कई बारी मौसम साथ जेड़ा सा नहीं दिंदा है। फिर बारी बारी कणक असां सुकाना पौंदी है, कई किसे सिजी आंदी है। इसके बाद थ्रेसिंग पर असां लई आंदे। थ्रेसिंग के बाद असां जो दाने वधिया 3-4 दिन जेड़ा सा तेज धुप्पा च सुकाने चाहिए, ताकि नमी ना रही है। अगर कोई असा धोना भी चाहते हैं, धोई के रखना चाहते हैं, ता भी वधिया धुप्प असां दाने जो लगाए लेनी चाहिए। तो बेणो फिर सुखे साफ ड्रम कोठी या बोरियां का इस्तेमाल असां करना चाहिए। नीम दी पत्तियां, हल्दी दी गठियां या पैकेट माचिस दी तीलियां, इसका प्रयोग असां करी सकते हैं। कीड़ियां वास्ते असां बोरियां जमीन के उपर रखनियां, ताकि नमी ना लगे। जेडे भी है रखने हैं तिना च भी टुटे फुटे दाने असां हटाई देना चाहिए। कने बोरियां वास्ते लकड़ी दे तख्तियां पर असां इस जो रखी सकते हैं। जे तो भंडारण करना हो, सह जगह हवादार होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए। कपड़े च बन्नी करी असां चूने दी डलियां भी असां इस्तेमाल करी सकते हैं। अगे मौसम बेणो बरसाती दा उने वाला है, कने झटफट ये काम मुकाई लेने, नहीं तो कणक सुकाना जड़ी से असां सारे जो मुश्किल हो जानी। तो कार्यक्रम च बेणो हुण असां गल करनी है खान पान दी। बेणो अचार खाने दा जड़ा स्वाद है, सह अचार जड़ा सह बदाइन दा खाने दा स्वाद, कने नींबुआ दा जड़ा अचार है सह पेटे वास्ते तो खरा हुंदा ही है, पर असां बड़िया आसानी कन्ने इस जो बनाई भी सकते हैं चटपटा अचार। 800 ग्राम नींबू लैने, कन्ने 150 ग्राम नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1.5 वड्डा चम्मच जड़ा साबत जीरा लैना, कन्ने 1.5 चम्मच मेथी दाना लैना, 1 वड्डा चम्मच राई, कन्ने 2 वड्डे चम्मच अदरक लैना, हींग लैना। तो बने पहले नींबू वधिया धोई बनाई लैने, सुकाई लैने, तीस विच पानी ना रहे, फिर तिना जो छोटे छोटे टुकड़े च असां कट्टी लैना। कन्ने हल्दी अग्गी च एक पैन रखना है, कन्ने तिस बिच जीरा, हींग, राई जो सुनहरा जेड़ा सा हाँ भुनी लेना, फिर मसाले जेड़े सा ठंडे होने देने, कन्ने से हाँ दर दरे पी लेने। एक बर्तन हाँ लेना, तिस बिच नमक, हल्दी, हींग, कन्ने पीतियो मसाले जेड़े सा पाई देने, कन्ने फिर नींबुआ के टुकड़े जेड़े हाँ कीते न सैतीस मसाले च पाई देने, कन्ने वधिया हत्था कन्ने से मिलाई लेने, ताकि मसाला तिना च वधिया लगी आए। फिर एक कांच का जार लेना या बरनी लैनी, तिस बिच सह अचार पाई देना, कन्ने एक हफ्ता अगर असं धुप्पा च रखते हैं तो सह अचार वधिया जेड़ा सा गली आता है, जेड़ा झट खाने वास्ते तैयार हो जाता है। जिहड़ी बरनी है तिस जो हिलांदे रहना चाहिए, ताकि अल्टा पलटी करने ते जेड़ा सा अचार जेड़ा सा घट गली गली आता है, कन्ने स्वाद भी तिस ते वधिया रहिंदा है। स्वाद बधाने वास्ते असां सुका कद्दूकस कीता अदरक असां इस विच मिलाई सकदे न कने ना मिलाना चाहते तो ना भी मिलाई सकदे न जरूरी नहीं है कि भी हाँ अदरक लगाना ही है तो फिर एक महीने से अचार जिहड़ा सा वधिया स्वादिष्ट बनी जांदा है ये बिना तेले वाला अचार हुंदा है अगर असां खट्टा मिठा अचार बनाना चाहते हैं तो एक छोटी चम्मच काली मिर्च एक चम्मच जीरा एक वड्डी इलायची एक चम्मच अजवाइन कने एक चम्मच कलौंजी कने 250 ग्राम चीनी या गुड़ कने एक चम्मच काला नमक का दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ये सारी समग्री जिहड़ी सा कट्टे निम्मो च मिलाई देनी कने एक हफ्ता जिहड़ा सा धुप्पा च रखना ताकि चीनी जिहड़ी सा वधिया गुड़ी जाए तो बणो अचार जो स्टील या एल्यूमीनियम दे बर्तन च नहीं रखना है तो इस दे जिहड़े सा दुष्परिणाम जिहड़े सा मिलते हैं सेहत वास्ते भी सा ठीक नहीं होंदा कई कि सा खटाई कने मिली की जिहड़ा सा जहर बनी जांदा है तो हो सके तो कांच की बरनी या प्लास्टिक दे घरे कोई डिब्बे भी होंगे तो इन्हों का भी इस्तेमाल असं करी सकते हैं लेकिन डिब्बा वधिया होना चाहिए घटिया प्लास्टिक नहीं होना चाहिए पर हो सके भैनो तो कांच का इस्तेमाल ही इन अचारा वास्ते असें करना चाहिए तो भैनो ये जेड़े अचार होंगे ये खाने वास्ते भी वधिया होंगे कने इस कने असा नींबू के अचारे कने जेड़ा सा अजकल गर्मी का मौसम चलिया है तो गर्मी च असा जेड़ा सा मूली का अचार भी इस्तेमाल करन सह भी सेहत वास्ते जेड़ा सा वधिया रहिंदा तो कार्यक्रम च हुण सुनवांदे ने एक होर लोक गीत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation." India has called out Pakistan's long-tainted record of genocide at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said, "It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India."
3: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
2: Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Patriots and Veterans Affairs of South Korea Kwon Oh-yul today jointly inaugurated the Indian War Memorial at Im Jingak Park in Seoul. Constructed as part of the commemorative events marking the 75th anniversary of the Korean War, the memorial stands as a tribute to the courage, sacrifice and humanitarian service rendered by the 60 para field ambulance of the Indian Army and the custodian force of India during the war. Highlighting the transformative potential of artificial intelligence in reshaping healthcare systems, Union Health Minister Mr. Jagat Prakash Nadda has said, while AI presents immense opportunities for advancing healthcare delivery, it must be shaped by sound regulation, rigorous research and ethical oversight. Mr. Nadda, while addressing an event during the 79th World Health Assembly in Geneva, also said, the country is governing AI for 1.4 billion citizens across 22 official languages and varying levels of healthcare access. The Directorate General of Health Services has issued an advisory regarding Ebola disease for passengers arriving from or transiting through affected countries. According to the advisory, travelers who have visited high-risk countries, including the Democratic Republic of Congo, Uganda and South Sudan, and are experiencing symptoms such as fever, headache, muscle pain, unexplained bleeding and vomiting, have been urged to seek immediate medical attention. The government has said no cosmetic product is permitted to be used as an injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. The Central Drugs Standard Control Organization has said the cosmetics are only intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on the human body. It said the manufacture and import of cosmetics for sale and distribution are regulated under the provisions of the Cosmetics Rules 2020. The West Bengal government has announced that Vande Mataram will now be compulsory as the prayer song in all madrasas. The Madrasa Education Department has issued a directive stating that from now on, students in institutions under the Minority Affairs and Madrasa Education Department must sing Vande Mataram before the start of classes, replacing earlier guidelines and practices. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. And with that, we end this news bulletin.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 1:10 हुए हैं, अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
5: हवा के साथ साथ,
6: अरे रे रे।
5: घटा के संग संग,
6: संभालना।
5: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफ़र में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है। लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफ़र प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूँ, और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूँ। घर की चाय जो मेरी हमसफ़र यानी कि धर्म पत्नी ने बना कर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूँ और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा ज़रूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफ़र में चाय का जिक्र हो तो सफ़र का मज़ा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं। मज़ा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं। चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बनफूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई ख़ास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हों, तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है।

एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती।

है। वो खत भले ही धूल खा रहा था, लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाएं, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी। और सबसे ज़्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज़्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग। इस फिल्म का ये गाना है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफ़र की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफ़र के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार ठंड

हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुनें पुरानी मीठी यादों को ताज़ा कर रही हैं, जिसमें उदास दोपहर भी संगीतमय और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना, लता जी की आवाज़ है, मजरू सुल्तान पुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफ़र कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने क्या का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस ज़माने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूँछ पकड़ कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहाँ से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज़्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुँची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। ज़िया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहाँ की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी ख़त लिखने लग जाऊँ तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूँ। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है, बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाज़ा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्मपत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक, हाँ, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफ़र हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह, सचमुच बहुत तेज़ गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज़, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने के सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाहट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सकें, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताज़ा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले की आवाज़ें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुँचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है। तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार और लता जी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफ़र यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।
1: बच्चे

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता, और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है, और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

0: आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: India has recently launched।
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर

0: निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4th स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
4: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे

0: और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में भाभी की चूड़ियाँ इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। इन चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्के नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। चंबा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले की 319 ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियों के अलावा मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। मुकेश रेपसवाल ने सभी पात्र मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है।
1: हमारे जो पोलिंग स्टेशन्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हर गांव के अंदर उपस्थित हैं। तो जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो कि 26 को, 28 को और 30 मई को अपने अपने स्टेशन्स पे जाके इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगी, तो जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग है, साथ में जो हमारे ARO's हैं जो कि काउंटिंग के प्रोसेस को ओवरसी करेंगे, उनकी करंटली जो ट्रेनिंग्स हैं वो SDM लेवल पे इम्पार्ट की जा रही है। फाइनल ट्रेनिंग हमारी 24 तारीख को होती है। उसके बाद जो पार्टीज हैं वो अपना सामान मटेरियल लेके अपने पोलिंग स्टेशन्स के लिए मूव कर जाते हैं। पोलिंग स्टेशन्स पे मतदाता आते हैं के लिए भी जो बेसिक वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज हैं, रैंप की उपलब्धता प्लस बिजली पानी एक्सेट्रा, ये सब भी हर जगह पे सुनिश्चित कर लिया गया है।
0: उधर सिरमौर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 1,641 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में 54 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील और 268 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।
2: हमारे टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो है 371,404, उसमें से पुरुष की संख्या 194,309 है, फीमेल है हमारे 177,09, और इसके अलावा हमारे टोटल पोलिंग बूथ है 1,641। हाइपर सेंसिटिव पंचायत पोलिंग स्टेशन हमारे 54 हैं, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हमारे 268 हैं, और जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है हमारे वो 1,319।
0: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। हर साल ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नगर निगम शिमला द्वारा छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राजीव गांधी के सद्भावना और विकास के दृष्टिकोण को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि उनके दूरदर्शी विचार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वहीं शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्था के लिए दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
3: आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य पे हम कांग्रेस भवन में भी और राजीव गांधी चौक पे भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने हमारी विजन दी है, यूथ को विजन दिया है। 18 साल का उन्होंने ही एक वोटिंग राइट यूथ को दिया था। महिलाओं को में उन्होंने 50% इलेक्शन और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विजन दिया था। और जो उनका विजन था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि किस तरीके से उन्होंने कंप्यूटराइजेशन करने की कोशिश, मॉडर्न इंडिया का विजन उन्हीं से स्टार्ट हुआ था और आज वो विजन कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है और हिंदुस्तान में, जो उन्होंने आज से 30-35 साल पहले सोचा था।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
4: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए शिमला जिला की चिट्ठी। इसके लेखक हैं योगराज शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
5: मई का महीना जिला शिमला के लिए अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों, प्रशासनिक पहलों, सांस्कृतिक आयोजनों और जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए खास रहा। महीने की शुरुआत शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में पोटैटो वैल्यू चेन को मजबूत करना विषय पर आयोजित स्टेक होल्डर सम्मेलन से हुई। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से किसान, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और आलू उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने रसायन मुक्त आलू उत्पादन को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि अत्यधिक रासायनिक प्रयोग न केवल किसानों के स्वास्थ्य बल्कि मिट्टी की उर्वरता के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने टिकाऊ खेती और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। प्रदेश सरकार द्वारा हरित विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय परिसर से नगर निगम शिमला के 10 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया जिसने कचरा प्रबंधन के लिए अपने वाहन बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के उद्देश्य से ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी एक गंभीर घटना भी सामने आई जब रोहडू एसडीएम कार्यालय और अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। शिमला के भराड़ी क्षेत्र में धमकी भरे पोस्टर लगाए गए जिसके बाद पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। एहतियात के तौर पर एसडीएम कार्यालय और अदालत को खाली करवाकर तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। पुलिस ने सदर थाना में एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी व जिला जनगणना अधिकारी ज्योति राणा की अध्यक्षता में बचत भवन शिमला में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला के 26 फील्ड प्रशिक्षकों को तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी और पहली बार स्वगणना प्रणाली लागू रहेगी। 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक मकान सूचीकरण व मकानों की गणना की जाएगी। शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र में भी जिला शिमला ने महत्वपूर्ण गतिविधियों की मेजबानी की। कोटशेरा कॉलेज और देश भगत यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, तकनीकी विकास और पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। राजधानी शिमला में छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 2 दिवसीय एमएसएमई मंथन मीट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने वर्चुअल माध्यम से किया। सम्मेलन में वित्तीय संस्थानों, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया तथा मार्केट एक्सेस, तकनीकी उन्नयन, वित्तीय स्थिरता और नीति सुधार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महासु आर्ट शिमला की 7वीं अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में हिमाचल सहित अन्य राज्यों के कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना रहा।
4: थे शिमला जिले की चिट्ठी, इसके लेखक थे योगराज शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था।
6: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
7: निर्धन परिवार में हुआ जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था। और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
8: बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राही बाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राही बाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
7: क्या बात है।
8: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुनपन त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
7: बिल्कुल। राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
8: बिल्कुल। और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करते हैं कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताज़ा ही खा लेते थे। इसी के उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला। और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहाँ से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की। और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राही बाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
7: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाभलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
8: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएँ 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
7: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
8: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
7: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए,
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज़्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज़्यादा।
0: और पौराणिक कथाएं हैं ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समा बनता है ना कि बस

0: लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
1: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
0: वो चाय की चुस्कियाँ चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए, एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानी, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे हमें मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं। और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे, तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
1: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो, तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है, बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
1: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कहते ना तोहफे हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियाँ और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया. और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया.
1: बिल्कुल.
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था. ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई.
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए हैं इस पे. और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है. और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था. भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है.
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश है उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं. इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहाँ भी इनका प्रचलन बहुत है. लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है. अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो ज़रूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपये की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहाँ घंटों बैठ कर बतिया सकते हैं.
1: बिल्कुल. और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है. अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं. कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें.
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला.
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो.

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की,
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है, ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज़ नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं, तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी, जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा ना वा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं, भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी की कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना, मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
0: चाय के प्याले भी करवा लिए जाते हैं
1: कप चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिस पर लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो, क्या बात है भाई,
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
1: एक और मैसेज होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी, सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षिता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत तो और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जाँच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया है ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज़्यादा होता है। किसी चीज़, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा, ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियाँ या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आँखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां से आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल। और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तेज़ धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा ज़रूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी के मुंबई के इंद्र से रिले किए जा रहे हैं।
1: हेलो, फरमाइश।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुँचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्ही गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम,
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। तो यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे?
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में काट कर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सखाव की बात होती है और सखाव की बात होती है, कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाटे, और इसमें गाने के बोले डक डक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंतजारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहेलियां जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगी कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: में फिर तेरी कहानी याद आई, काले बोलने दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है, आजकल तो पक्के की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्का लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्के लगाएंगे वो भी कम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेके आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेके अगस्त सब अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपने अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में, शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ जी जी जी हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
1: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ, हेलो सहेली में भी, और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं। जब मन चाहेगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
1: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
0: जी मेहरबानी आप लोगों की,
1: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
0: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
1: जी, अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
0: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं हम तो, गर्मी का अभ्यास है।
1: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
0: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है, और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
1: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
0: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
1: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
0: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
1: जी,
0: धर्मेंद्र हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: जटिल कला है, जटिल कला है, जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुफियान है या कोई तस्सर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा, इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी, अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरल पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: जय महाराष्ट्र। आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी। और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी। मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी।
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है, वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ हाँ। तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी।
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार
1: में? मैं ही सुनता हूँ। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेट भी होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत,
2: तौबा ये मतवाली चाल।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम। नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी। मैम मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं
1: जी। मैम बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम जी। मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम। ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है।
1: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोटनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोटनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोटनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोटनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार साहिब।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबले, ग्राम तामनाकर तालुका कागल जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। साहिब,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हम दे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वह पिछले साल में बंद रहता हुआ घर में रहता हो, सुनता हो।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हो।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोती बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोती बमाजा बोलूया चांगे भले, सासन काठी डुले जोती बाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोती बाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले
0: डुले। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने प्यार किया लता मंगेशकर, एसबी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
0: ठीक है।

0: ये था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये फैसला लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to cooperate on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. In a joint press conference with Prime Minister Modi in Rome, Italian Prime Minister Meloni described the IMEC as a major connectivity and economic corridor linking Europe, the West Asia and India, with the potential to strengthen trade, investment and supply chain resilience. Prime Minister Modi said Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply remains stable and steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav today held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several recent fire incidents in trains have revealed the involvement of anti-social elements. The ministry said that such incidents has been taken up seriously and the Railway Protection Force is actively probing them. The discussions during the security review meeting focused on strengthening intelligence, gathering mechanisms from the field through an improved reporting system. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology innovation, high precision defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity. The fourth India-Africa Forum Summit, which was scheduled to be held from the 28th to 31st of May in New Delhi, has been postponed in view of the evolving health situation in parts of Africa. External Affairs Ministry said in a statement that consultations were held between India, Chairperson of the African Union and the African Union Commission. Following consultations, the two sides agreed that it would be advisable to convene the fourth India-Africa Forum Summit at a later date. New dates for the summit and its associated meetings will be finalized through mutual consultations and communicated in due course. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar conducted the computerized draw for selection of yatris for the Kailash Mansarovar Yatra 2026. The 2026 edition of the Yatra will commence in June and conclude in August. External Affairs Ministry said in a statement that a total of 1,000 Yatris have been selected through a fair, computer-generated, random, gender-balanced selection process. The selected Yatris will travel in 20 batches, each consisting of 50 Yatris, through the Lipu Lake and Nathula passes. Benchmark domestic equity indices ended on a negative note after volatile trade today. The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by 4 points to settle at 23,655. And that is the end of this news bulletin.
1: FM Band 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भजन फिल्मों से। सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं शाम के इस प्रसारण में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भजन के साथ।

अभी आपने सुना सरगम फिल्म से इस भक्ति रचना को। आवाजें थी मोहम्मद रफी व साथियों की। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना ब्रह्मास्त्र फिल्म से ये भजन, जिसे गाया था अरिजीत सिंह व साथियों ने। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म की ये रचना।

भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाई इसी रचना के साथ हमारा आज का भजन फिल्मों से ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन फिल्मों से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज हम बात करेंगे विज्ञान जगत व रोजगार समाचारों पर।

युवा मंच कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को, हमारे श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो युवा साथियों, हम हाजिर हो गए हैं ठीक उसी समय पर लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। परंतु दोस्तों, जैसा कि आप हर रोज सुन ही रहे होंगे कि जानकारियां तो हम आपके साथ हर रोज साझा कर रहे हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। और हम अपने युवा साथी श्रोताओं से ये अपेक्षा भी रखते हैं कि अगर आपको युवा मंच कार्यक्रम का ये नया अंदाज पसंद आ रहा है तो आप हमें पत्रों के माध्यम से, यानी कि पत्राचार करके या पत्र लिखकर या व्हाट्सएप के जरिए अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, युवा मंच कार्यक्रम की इस कड़ी में आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त वर्षा कटोच, और आज हम विज्ञान जगत और रोजगार समाचारों पर आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो साथियों को तो पहले इंतज़ार होता है म्यूज़िकल ब्रेक का। बिल्कुल, हम आपके इंतज़ार का जो है वो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और लेते हैं आपके लिए एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक, और फौरन हाजिर होते हैं फिर आपकी सेवा में। जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम पहले बात करेंगे विज्ञान जगत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का दौर विज्ञान और तकनीक का दौर है, जहाँ हर दिन कोई नई खोज, नया गैजेट और नई टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बदल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट विज्ञान जगत की। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज पूरी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब AI केवल मोबाइल और कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और अंतरिक्ष विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। भारतीय युवाओं द्वारा बनाए गए कई AI ऐप्स इन दिनों चर्चा में हैं, जो पढ़ाई, भाषा अनुवाद और कोडिंग में काफी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में AI आधारित नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ेगी। अब बात करते हैं लेटेस्ट गैजेट्स की। नई पीढ़ी के स्मार्टफोन्स अब AI आधारित फीचर्स के साथ आ रहे हैं। इन फोन्स में स्मार्ट कैमरा, लाइव ट्रांसलेशन, AI फोटो एडिटिंग और वॉइस असिस्टेंट जैसी सुविधाएं युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। यानी अब मोबाइल सिर्फ कॉल करने का माध्यम नहीं दोस्तों, बल्कि एक स्मार्ट डिजिटल साथी बन चुका है। और अब चर्चा एक बेहद रोचक तकनीक की, यानी स्मार्ट ग्लासेस की। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। फौरन हाजिर होंगे आपकी सेवा में, तब तक जुड़े रहिए आप आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 MHz पर।

कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का हम स्वागत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान जगत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट ग्लासेस की आजकल बहुत चर्चा है। भविष्य में शायद मोबाइल की ज़रूरत कम हो जाए क्योंकि ये स्मार्ट ग्लासेस आपकी आंखों के सामने ही इंटरनेट जानकारी, मैसेज और नेविगेशन दिखा सकेंगे। वॉइस कमांड के जरिए आप बिना मोबाइल छुए कई काम कर पाएंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान में भी लगातार नई उपलब्धियां सामने आ रही हैं। वैज्ञानिक अब ऐसे रोबोट एस्ट्रोनॉट्स तैयार कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च और मुरम्मत का काम करेंगे। भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट रिसर्च में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे युवाओं के लिए साइंस और रिसर्च के नए अवसर खुल रहे हैं। और अब गेमिंग प्रेमियों के लिए खास खबर, नई AI गेमिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब गेम्स के कैरेक्टर्स खिलाड़ियों से बातचीत भी कर सकेंगे और हर खिलाड़ी के अनुसार अलग व्यवहार करेंगे। इससे गेमिंग एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज़्यादा वास्तविक और रोमांचक हो जाएगा। तो दोस्तों, विज्ञान और तकनीक की दुनिया हर दिन नए बदलाव लेकर आ रही है। ज़रूरत है इन नई तकनीकों को समझने की, सीखने की और उनका सही उपयोग करने की। हो सकता है आने वाला अगला बड़ा वैज्ञानिक इनोवेटर या टेक एक्सपर्ट आप ही में से कोई एक हो। और अब विज्ञान जगत में जो बातें करनी थी वो तो हमने आपके साथ साझा कर ली और अब लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद बढ़ेंगे हम रोजगार समाचारों की तरफ।

युवा मंच कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान जगत और रोजगार समाचारों पर। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रोजगार समाचारों की। सबसे पहले लेते हैं आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 की। दोस्तों, भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन शुरू होंगे 15 मई 2026 को और की अंतिम तिथि रहेगी 14 जून 2026। योग्यता रहेगी 10वीं पास एवं आईटीआई डिप्लोमा होल्डर। और चयन प्रक्रिया सीबीटी परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं मेडिकल टेस्ट। आगे हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भर्ती 2026 की। तो दोस्तों, 5000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है। योग्यता स्नातक, आयु सीमा 20 से 28 वर्ष। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून 2026। अब आगे हम बात करेंगे आरआरसी एससीसीआर ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में 1644 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योग्यता रहेगी 10वीं पास एवं आईटीआई। अंतिम तिथि रहेगी 4 जून 2026। कॉल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती, इस पर विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। कुल पद हैं 660। योग्यता इंजीनियरिंग संबंधित विषय में डिग्री। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून 2026। एसएसबी कांस्टेबल भर्ती की अगर हम बात करें तो सशस्त्र सीमा बल में 404 पदों पर भर्ती। योग्यता 10वीं-12वीं पदानुसार। अंतिम तिथि है 7 जून 2026। एयरफोर्स कमीशन्ड ऑफिसर भर्ती, भारतीय वायुसेना में लगभग 300 पदों पर भर्ती। योग्यता स्नातक इंजीनियरिंग। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून 2026। बीपीसीएल भर्ती 2026 की अगर हम बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में विभिन्न पद, कुल पद 250। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मई 2026। यूपीएसएसएससी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती, उत्तर प्रदेश आवकारी विभाग में 722 पदों पर है। योग्यता 12वीं पास। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2026। इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित विभागों के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता एवं दिशा निर्देश युवा साथियों अवश्य पढ़ लें।

युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां आपकी दोस्त वर्षा टोश को ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो चलने से पहले आपको हम ये कहना चाहेंगे कि मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, तो आप ऐसे में अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। और चलते चलते हम आपको बता दें कि इस मनोरंजक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पॉल सिंह। और अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला केंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:06 पर आप सुना करते हैं सदाबहार संगीत कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत।

मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:30 का। इसमें आज भेड़ बकरी पालन विषय पर जानकारी साझा करने के साथ साथ मनोरंजन भी करवाया जाएगा लोकगीतों के माध्यम से। कार्यक्रम किसानवाणी शाम 7:10 पर। इसमें आज कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग विषय पर आपके साथ बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी करवाया जाएगा। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस हम प्रसारित करेंगे रात्रि 8:30 पर। सुनिएगा देश गायन रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभिनेता पर फिल्माए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 पर गजलें फिल्मी व गैर फिल्मी प्रसारित की जाएंगी। हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 10 का। रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें आप सुना करते हैं पुरानी फिल्मों से कुछ गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 व रात्रि 11 हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या व रात्रि 9 News@9 भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थे विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर निगम महापौर और सहब कर्मियों के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कर्मचारियों को लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सहमत मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
1: जो इनकी डिमांड्स थी उसको हमने 10% की वृद्धि को भी माना। ईजीएम 4 जून को होने तय हुई है, उसको हम उसमें फाइनल करेंगे। एक डिमांड ये भी आई, जो हमारे कर्मचारी सुपरवाइजर जिनको टर्मिनेशन का लेटर इश्यू हुआ है वो किया जाए, उसमें मैंने लिखा है और उसको मिश्र साहब को भी भेजा साथ साथ कि आप इसको जो भी इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिवोक भी किया जाए। हमारा एक पारिवारिक एक मसला जिस तरह से होता है उसको बैठ के हमारी सारी चीजें सॉल्व हुई।
0: दूसरी ओर सहब सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत ने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद अब कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे।
2: हमारी जो मेयर साहब के साथ सहमति बनी हुई है कि जो 10% है वो मेयर साहब की तरफ से क्लियर है कि हम देंगे, और इसे जो है एजीएम में ले जाना पड़ेगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो रोड स्वीपिंग स्टाफ है, उनको 4/9/14 नहीं लगता था, उसके लिए भी इन्होंने हम वर दिया कि वो भी हम जो है इसको कर देंगे। और साथ में स्पेशल लीव जो मिलती थी हमारे 15 डेज की, वो भी जो है इन्होंने हम वर दिया है कि इसको भी हम दोबारा चालू कर देंगे। और जो हमारे 41 लोग टर्मिनेट किए गए हैं उनको भी जो है मेयर साहब ने यहाँ से लिख के भेज दिया है कमिश्नर साहब को, इनकी सेवाएं जो है कल से शुरू की जाए और कल से जितने भी सहायक कर्मचारी है वो अपने अपने कार्य पे जाएंगे।
0: गौरतलब है कि पिछले 1 सप्ताह से सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। हर साल ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नगर निगम शिमला द्वारा छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राजीव गांधी के सद्भावना और विकास के दृष्टिकोण को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि उनके दूरदर्शी विचार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वहीं शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्था के लिए दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने रेणुकाजी बांध प्रबंधन पर विस्थापितों की मांगों को लगातार अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांध प्रबंधन ने एनजीटी के आदेशों को दरकिनार करते हुए सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू किया और एनजीटी की शर्तों को भी पूरा नहीं किया। योगेश ठाकुर ने कहा कि रेणुकाजी बांध प्रबंधन विस्थापितों पर जबरन कई शर्तों को थोप रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
3: रेणुका बांध में जो हमारे विस्थापित बाई इफेक्टेड जो हो रहे हैं उनके साथ जो है पिछले 17 सालों से अनदेखी की जा रही है, तो हमारी मांग यही है कि एनजीटी के मापदंडों को जो हमारा बांध प्रबंधक है उसको फॉलो करे, जो भी है कंडीशन है ये इसको हटाया जाए और बिना कंडीशनों के हमारी जो हाउसलेस के लिए जो भी हमें पैसा मिलना है वो बिना कंडीशनों का हमें मिले।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार संगीत कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, हम हाजिर हो गए हैं सदाबहार संगीत लेकर। श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि हमारी आंखें जो हैं वो हमारे दिल की सारी बातें जानती हैं। आंखें दिल का आईना होती हैं। अगर श्रोताओं दिल हमारा खुशी मना रहा है तो वो खुशी हमारी आंखें बयां करती हैं। दिल के हर भाव को ये आंखें समझती हैं। जी हाँ श्रोताओं, चलिए आज हम आंखों के सभी हाव भाव की बातें भी करेंगे और बातें होंगी गीत संगीत के माध्यम से। तो चलिए सुनते हैं ये आंखें क्या कह रही हैं।

अभी आपने सुना रंग फिल्म से यह गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक, कुमार शानू ने संगीत दिया था नदीम श्रवण ने, और गीत के बोल लिखे थे समीर ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं ये ब्रेक।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
2: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यहीं? इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। TNC अप्लाई।
4: सदाबहार संगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम फिर से स्वागत करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं आँखों की। दोस्ती के भी कुछ अंदाज होते हैं, दोस्ती के भी कुछ अंदाज होते हैं। जागती आँखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। ज़रूरी नहीं कि गम में आंसू निकलें, मुस्कुराती हुई आँखों में भी सैलाब होते हैं।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa. कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार संगीत, जो कि आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे हैं। जी हां श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं आंखों पर तेरा रिश्ता इस तरह निभाएंगे हम, तेरा रिश्ता इस तरह निभाएंगे हम, तुम रोज़ खफा हो पर हम रोज़ मनाएंगे, पर मान जाना मनाने से, मान जाना मनाने से, वरना हम ये भीगी आंखें लेके कहाँ जाएंगे।

साथी फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का सदाबहार संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। वर्षा टोश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार संगीत FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मोजा ग्रैंड दियां सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कने बाकी सुनने वाले सारे श्रोतियां जो सैकटरी दी राम राम कने किसान साथियों अज दे कार्यक्रम विच जिहड़ा अहां गलबात करनी है सह है भेड़ बकरी पालन दे बारे विच जिहड़ा कि ग्रां दे लोकां जो घट खर्च विच अच्छा रोजगार जिहड़ा सह बनी सकदा है कने
1: ओ सुनदे हन सैकटरी होरां दे कने चुन्नी ताई ते ए मजेदार गलबात तां पल्यो सैकटरी जी अज कल हर कोई भेड़ बकरी पालन दी गल करा दे न दसा इस विच क्या फायदा है
0: चुन्नी ताई भेड़ बकरी पालन ग्रां दे लोकां वास्ते एक बड़ा अच्छा रोजगार है कने इस च घट खर्चे आउंदा है कने अच्छी कमाई भी हुंदी है
1: अच्छा सह की आ
0: दिखा ताई भेड़ा ते उन मिलदी बकरियां ते दुध मिलदा कने इन्हां दे बच्चियां बेची करी भी अच्छी कमाई जिहड़ी इस हुंदी है
1: मतलब कि एक काम कने कमाई दे मते रस्ते होना
0: बिल्कुल सही गलाया तुहां
1: अगर कोई किसान ये काम शुरू करना चाहता हो तो सब तो पहले क्या करना चाहिए
0: दिखा जी सब तो पहले तो अच्छी नस्ल दियाँ भेड़ कने बकरियां खरीदना चाहिए फिर तिना वास्ते एक साफ कने हवादार जड़ा सा बाड़बंदी करना चाहिए है तीसरे तो हाँ ग्राल भी बोली सकते
1: हाँ जी हाँ जी साफ सफाई इन्नी जरूरी क्यों है
0: बड़ी जरूरी है जी अगर जगह गंदी होगी तो अहाँ के जो जानवर होंगे ना ये झट बीमार पे आते कने अगर अहाँ के जानवर बीमार हो जान तो अहाँ नुकसान होना दिखा कई बार जानवर बीमार होने बाद जो है दूध देना भी बंद कर दिता
1: अच्छा कि मतलब है कि पशुओं की देखभाल बच्चों सा ही करनी पौंदी है
0: बिल्कुल ताई ताई अहें इसका अच्छा फायदा मिली सकता कने अहां इस कम ते जड़ा सा अच्छी कमाई जड़ी इसे करी सकते हैं
1: तो सेक्रेटरी जी इन्हां जो खाने ते क्या देना चाहिए
0: दिखा जी इन्हां जो खाने वास्ते जड़ा सा सुखा चारा दाना साफ पानी जड़ा सा देना चाहिए कने कने कने मिनरल मिश्रण भी देना चाहिए ताकि अहां दे जड़े जानवर हैं सह स्वस्थ रहन
1: अगर खाना ठीक ना मिले तो
0: दिखा जी अगर हाँ दे जानवरों जो जड़ा खाना जड़ा नहीं मिलगा बढ़िया तो सह कमज़ोर हो जाना तिना दूध भी घट देना कने बीमार भी जल्दी होना
1: मतलब कि खरा खाना कने खरा फायदा
0: जी बिल्कुल वहाँ ठीक लाया कने दिखा अहाँ अपने किसान साथी के बड़ी अच्छी गलबात करा करते हैं कि हाँ अपनी गलबात इं अगे जी जारी भी रखनी है पर इससे पहले आप किसान साथियों सुना एक लोक गीत कने कुछ सुनाने ना संदेश।

0: and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
4: किसान साथियों सुने एक बड़ा प्यारा जो लोकगीत कने तुझे पता हाँ गल करा गया दिन भेड़ बकरी पालन के बारे में।
5: हाँ जी, तो सैक्टर जी ये दसा कि बीमारी से बचने वास्ते पशुओं को क्या क्या करना चाहिए।
4: दिखा तुम ठीक सवाल पूछा, दिखा कि अहाँ चल पशु पाल देना तो तिना बीमारियां होने का जो डर रहा है, तो समय समय पर अहें क्या है कि टीकाकरण जरा करवाना चाहिए। कने पशु चिकित्सक की जी सलाह जी सब आज समय समय पर लेंदे रहना चाहिए।
5: पर तुसा दिखा कि कई ग्राएं वाले कई बार इलाज करवाने देरी करी देंगे।
4: बिल्कुल ठीक गलाया। कने ये जी गलती है, सब तो बड़ी गलती अहाँ की कहलाई जाती है। कने थोड़ी देरी लापरवाही के कारण जरा अस अहें बड़ा बड़ा नुकसान जरा अस यह गलती ने हो भी आता है।
5: सच गलाया, इलाज तो बचाव खरा हों।
4: वाह ताई वाह, अज तो तुम बड़ी समझदारी वाली गल करा कर दे।
5: सैक्टर जी तुसा दिखा कि क्या महिला साड़ी किसान भैन भी ये काम करी सकदी हैं?
4: बिल्कुल बिल्कुल, क्या नहीं करी सकदी। अहां दी जिहड़ी ग्राएं दी महिला हैं सब भी भेड़ बकरी पालन करके अपने परिवार की जिहड़ी आमदनी सब बढ़ाई सकदी हैं।
5: तो क्या सरकार इन्हें मदद दिंदी है, दे सकदी है कुछ?
4: बिल्कुल, दिखा अहां दी जिहड़ी सरकार है सब पशु पालन वास्ते प्रशिक्षण भी दिंदी है, कने लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। तो कुल मिला के अहां दी सरकार जिहड़ी है इस कम्मे विच अहां दे किसान साथियों की जिहड़ी मदद जिहड़ी सी करदी है।
5: तो या फिर इत्थों दिखा ग्राएं दे जिहड़े नौजवान युवक हैं उन्हें जो रोजगार वास्ते बाहर जाने की जरूरत नहीं पौनी।
4: बिल्कुल तुम ठीक लाया। दिखा जी अगर कड़ी मेहनत अहाँ के जोड़े बेरोजगार युवक हैं सह करके कहना सही जानकारी लेंगे तो सह ग्राएं विच रही करी जरा सह अच्छी कमाई जी सह करी सकते हैं।
5: पर तुसा दिखा कि हूँ गलत तो और भी बड़िया करनी पर पहले सुनना एक प्यारा जहा लोग गीत।
4: जी ठीक है बिल्कुल जी, अहाँ सुना अपने किसान साथियों एक प्यारा जहा लोग गीत, पर लोग गीत के पहले अहाँ सुना एक संदेश।
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.

0: किसान साथियों अहां सुनिया बड़ा ही प्यारा जिहा लोकगीत कने अज अहां गल करा करदे हां भेड़ बकरी पालन दे बारे विच।
1: ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ?
0: ਦਿਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੌਰ ਪਰ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲੀ ਕਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ 'ਤੇ ਕੜਾ ਪਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਮਿਹਨਤ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਹ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: प्यारे किसान साथियों दिखा तो हाँ सारे वास्ते जड़ा सा मैं एक गल बोलना चाहता है कि भेड़ बकरी पालन जड़ा सा घट लागत विच अच्छा रोजगार जड़ा है दे सकता है। कने अगर सही नस्ल अच्छा खाना साफ सफाई कने समय पर इलाज का ध्यान रखा जाए तो व्यवसाय गाँव की आर्थिक स्थिति जो बदली सकता है। मतलब अहां दी भेड़ बकरी पालन दा व्यवसाय जिहड़ा करगे तां इस दे कारण अहां दे गांव दी आर्थिक स्थिति जिहड़ी है बदली सकदी है।
1: याद रखा, मेहनत वाला इंसान कदी पिछे नहीं रहिंदा।
0: बिल्कुल ठीक लगा दिखा, सरकारी योजना कने पशु पालन विभाग कने जुड़ी करी नवी नवी जानकारी लैंदे रहा तां खुशहाल किसान कने खुशहाल गांव। दिखा प्यारे भेड़ पालक कने अहां दे ग्रां दीआं महिलाओं वास्ते इक यही संदेश है कि भेड़ पालन जिहड़ा ऐसा केवल एक व्यवसाय नहीं है बल्कि ग्राएं दी एक आर्थिक मजबूती का आधार भी है। यदि अहां अपनियां भेड़ां दी सही देखभाल करके कने समय पर टीकाकरण करवांगे ना, साफ सफाई का ध्यान रख के कने पौष्टिक चारा देंगे तो अहां अपनी आमदनी जो लगातार जिहड़ा ऐसा बढ़ाई सकदे।
1: तां तुसां याद रखना है कि स्वस्थ भेड़ दी ज़्यादा उन अच्छे बच्चे कन ज़्यादा मुनाफा देना है।
0: बिल्कुल दिखा, भेड़ा जो बरखा ते बचाना हुंदा, ठंडी ते बचाना हुंदा, गर्मी ते बचाना हुंदा, ये बड़ा जरूरी है। समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लैंदे रहे कने नोईयां नोईयां तकनीकां भी अपनांदे रहे।
1: गाँव के नौजवान अगर मेहनत कने समझदारी कने भेड़ पालन करके तो उन्होंने रोजगार वास्ते शहरों च भटकने की जरूरत नहीं पौनी।
0: बिल्कुल दिखा, तो आओ मिलकर यहाँ एक संकल्प रहन, स्वस्थ पशु खुशहाल परिवार कने अहां दा समृद्ध ग्राम।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.

0: जाते जाते असं ये बोलना चाहते हैं कि मेहनत जो अपना भेड़ पालन बढ़ा कने खुशहाल बना।
1: बिल्कुल जी, दिखा भेड़ बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है। अगर अहाँ के ग्राएँ की आर्थिक स्थिति की गल करिए भेड़ बकरी पालन के जरिए अहाँ के ग्राँ की जी आर्थिक स्थिति है सह बड़ी ही बेहतर बनी सकती है। कने उन्होंने जाने का जोड़ा वक्त है सह भी होंदा है। जाने से पहले दस दीजिए तकनीकी सहयोग था विकास पठानिए था, कने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे जितेंद्र पाल सिंह, तो उन्हें दुनी दिया इजाजत।
0: अच्छा
1: अच्छा
0: जी,
1: जी,
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार और शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुआन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेक और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ

0: 35 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by 4 points to settle at 23,655. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग विषय पर आपके साथ जानकारी साझा की जाएगी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कने बाकी सुनने वाले श्रोतियों जो सैकटरी की राम राम कने किसान साथियों अज अहां जिहड़ी गलबात तुहां कने करनी है सह है कृषि कार्यां विच आधुनिक तकनीकां दा उपयोग।
2: राम राम सैकटरी जी।
1: राम राम चुनीता जी, क्या हाल है?
2: बस ठीक है सैकटरी जी, तुहां देखा कि अजकल खेतीबाड़ी की चिंता बड़ी सता दी है, कदी मौसम खराब, कदी फसल च बीमारी पौंदी, कने कदी मेहनत ज़्यादा करनी पौंदी, कने आमदनी घट होंदी।
1: ताई यही कारण है जल वहाँ खेती विच आधुनिक तकनीकां दा इस्तेमाल जिहड़ा सा बड़ा जरूरी हो गया है।
2: सैकटरी जी, ये आधुनिक तकनीकां आखिर होंदियां क्या हैं? साढ़े जमाने विच तां हल कन्नै बैलां दी खेती कीती जांदी थी।
1: दिखा ताई जिहड़ा समय है ना है बदला करदा हौले हौले, कन्नै अहां दे खेती दियां मशीनां, विज्ञानिक तरीके, मोबाइल ऐपां, ड्रोन, सिंचाई दी नई नई जिहड़ियां पद्धतियां ने सह अज सामने हो करदियां ने, कन्नै अच्छे बीजां दा इस्तेमाल भी कीता जा करदा ताकि अहां दी जिहड़ी मेहनत घट कन्नै उत्पादन ज़्यादा हो सके।
2: अच्छा, तो सब तो पहले ये दसा कि मशीन वाली खेत क्या फायदेमंद होनी है?
1: बड़ा फायदा दिंदी ताई, जिंया कि पहले खेत जोतने वास्ते कई दिन लगी जाते हैं, तो हूँ जो अहाँ का ट्रैक्टर है कुछ ही घंटे जरा सहाँ का काम पूरा करींदा, कने बीज बोने दी भी मशीन जिहड़ियां से अजकल आई हैं, जियाँ रिपर हो थ्रैशर हो हार्वेस्टर हो, तो किसानों जो समय कने मेहनत दोनों ही बचते हैं। इस विच
2: तो सैकटरी जी, छोटे किसान पल इतनी महंगी मशीन कुत्थों ते आउंगी भला?
1: बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल तो हाँ पूछा है ताई, कने सरकार जड़ा ऐसा हूँ कृषि यंत्रा पर जड़ी सबसिडी भी दिया करती है, कने कई कई जगह पर तो कस्टम हायरिंग सेंटर भी बने हुए, जिदा मतलब है कि किसान आपू वास्ते मशीन इतों ते किराए पर ले सकते हैं।
2: वाह जी वाह, मतलब कि मशीन खरीदनिया नहीं पौनिया ना?
1: बिल्कुल ताई, जरूरत के हिसाब ने किराए पर मशीन ले करी भी अहाँ अपनी खेती जी इसे करी सकते हैं।
2: ड्रिप कने स्प्रिंकलर सिंचाई पानी दी, सैकटरी जी पानी दी बड़ी किल्लत रहिंदी, बरखा तो हुण टाइमे पर नहीं होंदी।
1: सही गलाया ताई, कने इस वास्ते जड़ा किसान ड्रिप कने स्प्रिंकल सिंचाई अपना करदे न।
2: ये ड्रिप है क्या वाला जरा दसा?
1: ड्रिप सिंचाई दे माध्यम दे जड़ा है पाइपां दे जरिए पौधे दी जड़ा तक जड़ा सा बूंद बूंद पानी जड़ा पहुँचाया जाता है, कने इस दे इस पानी इस दे कारण जड़ा है पानी दी बचत भी होंदी है, कने हांदी जड़ी फसल है सा भी वधिया होंदी है।
2: मतलब कि खेत विच पानी नहीं भरने जरूरत है?
1: नहीं ताई, घट पानी विच ज़्यादा खेती संभव होई हो, कने सब्जियां फलां कने बागवानी वास्ते ये बड़ी ही फायदेमंद है।
2: कने स्प्रिंकलर?
1: स्प्रिंकलर जड़ा सा एक तरह से जियां बरखा पौंदी है तियां ही बरखा सा पानी जड़ा सा अहां खेतों विच जड़ा है छिड़कदा है, तो इसे हां स्प्रिंकल सिंचाई का माध्यम बोलते हैं।
2: तो सैकटरी जी, अजकल सारे लोग मोबाइल कने लगे हो रहंदे, क्या खेती विच भी मोबाइल कमे आंदा है?
1: बिल्कुल आंदा, अज अहां दे किसान मोबाइल दे जरिए मौसम दी जानकारी, मंडी भाव, बीजा दी जानकारी कने सरकारी योजना दी जानकारी जड़ी से ले सकदे न।
2: जी ये पता चली सकता कि बारिश कल होनी है?
1: बिल्कुल बिल्कुल ताई, तुहां ठीक लाया, कने अगर अहां दे किसानां जो पहले ते मौसम दी जड़ी जानकारी मिली है, तो अहां दे किसान समय पर बुआई करी सकदे, कने समय पर अपनी फसलां दी कटाई भी करी सकदे।
2: वाह जी वाह, इसते तां नुकसान भी घट होना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तुहां ठीक लाया, तकनीकां दा सही उपयोग करी करी किसानां दी आय जड़ी सी बढ़ाने विच मदद मिला करदी है।
2: सैकटरी जी, मैं तां टीवी विच उड़ने वालियां मशीनां दिखियां जिहड़ियां कि खेतां विच दवाई छिड़कदियां।
1: बिल्कुल दिखियां होणियां ताई, तुहां कने तिहा हो अहां ड्रोन बोलदे, कने हुण जिहड़े ड्रोन हन सा खेतां दी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2: ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
1: ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾ ਅਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ।
2: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਸਾਨ, ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਈ।
1: ਠੀਕ ਲਾਇਆ ਤਾਈ, ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2: ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ?
1: ਦੇਖਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਉੱਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2: ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
1: ਦੇਖਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਰਵਰਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਥ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।
2: ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਮ ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2: ਸੈਕਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ

0: कृषि तकनीकां जियां उन्नत बीज ड्रिप सिंचाई कृषि मशीना मोबाइल जानकारियां कने विज्ञानिक तरीकों जो अपनांगे तां घट मेहनत विच अधिक उत्पादन प्राप्त करी सकदे न। याद रखा सीखने वाला किसान ही हमेशा अगे वधदा है। सरकारी योजना की तुहां जानकारी लिया कृषि विभाग कने जुड़ा कने नवीं नवीं तकनीकां जो अपनाने विच संकोच मत करा कने कने अपनी मिट्टी पानी कने पर्यावरण की रक्षा भी करना हां दी जिम्मेदारी है।
1: तो वह मिली के संकल्प लिया आधुनिक तकनीक अपना खेती जो लाभकारी बना। बस मैं तो इतना ही बोलना है समय कने किसान जो बदलना है सही खुशहाल कने समृद्ध बनना है।
0: जी बिल्कुल ठीक लाया दिखा अहाँ के किसान साथियों जो अहाँ की गल जी है पसंद आई होनी है क्योंकि उन्नत तकनीक अपनाए करिए अहाँ की खेती जी सह बधाई करती है घटा नहीं करती। तो अहाँ के किसान साथी अहाँ यही उम्मीद करते हैं कि सह उन्नत तकनीक अपनाए करिए जरा सह अपनी खेती है जो अगे बधाएंगे।

0: किसान साथियों, अहाँ सुने बड़ा प्यारा जहाँ लोकगीत, कने लोकगीत के बाद वक्त है फ्री तो जानकारी का। कने जानकारी वास्ते अज अहाँ टियाले जी गलबात है सह है एक उन्नत किसान कने की गलबात, कुथुते ने किसान कने क्या करा दे खेतीबाड़ी, कने किया अपनी खेतीबाड़ी संभाल करते हैं, वह सुनते हैं जानकारी।
1: किसान साथियों, जिं कि तुसा जानते हैं कि टियाले के माध्यम कने असा तुहानू तक ढेर सारी जानकारियां कने भी पहुँचाते हैं, चाहे से जानकारी डॉक्टर की होए, विज्ञानिक की होए या फिर असा दे उन्नत किसान भाई की होए। तो अज इस कड़ी बिच साढ़े कने जुड़े ने एक उन्नत किसान भाई। तो जी कुछ दे बोला दे तुसा?
2: जी नगरी ते बोले सर, अनिल।
1: अनिल जी खेती बाड़ी का काम करते ना?
2: हाँ जी सर, हाँ जी।
1: अच्छा, तो असा दे सुनने वाले ये दसा कि कितनी करी करनाल जमीन है तुसा? वाला
2: 20 करी करनाल, लेकिन 10 करी करनाल चा बिजाई कर दे, 10 करनाल खाली छड़ी सर।
1: अच्छा, और ये जेडी 10 करनाल च तुहा बिजाई कर दे ना?
2: हाँ जी सर।
1: ये सारी मतलब पानी लागे जमीन?
2: हाँ जी सर, बिल्कुल जी, पानी लग गया।
1: और ये जेडी 10 करनाल है, इसका क्या करते हैं? मतलब ये क्या घासणीता इसका प्रयोग करते या फिर कुछ और लगाया, मतलब खड़ेत्र है या फिर?
2: सर 10 करनाल जेडी है, हां खड़ेत्र यूज करा करने, बाकी जेडी 10 करनाल सर बैंड है।
1: अच्छा, तो इस वेले क्या कुछ कामकाज लगाया तुसा अपने खेत खलाने च? कटाई दा काम चले होना कणक कटाई दा?
2: सर कणक दी साडी कटाई सर ना।
1: अच्छा,
2: कने हुन अगली हां फसल दी तैयारी करे दे।
1: अच्छा, कटाई दा ले काम चले की करी बैठे हो?
2: थोड़ी जगह अधिक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 होने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार जारी। पहले चरण के मतदान के लिए 24 व 25 मई को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कर्नाटक स्मार्ट सिटी के सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाएंगे। और प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी, ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से पार। अब समाचार विस्तार से। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर निगम महापौर और सहब कर्मियों के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान कर्मचारियों को लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सहमत मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
3: इनकी डिमांड्स थी, उसको हमने 10% की वृद्धि को भी माना। EGM 4 जून को होने तय हुई है, उसको हम उसमें फाइनल करेंगे। एक डिमांड ये भी आई, जो हमारे कर्मचारी सुपरवाइजर जिनको टर्मिनेशन का लेटर इशू हुआ है, रिवोक किया जाए। उसमें मैंने लिखा है और उसको मिश्र साहब को भी भेजा साथ साथ कि आप इसको जो भी इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिवोक भी किया जाए। हमारा एक पारिवारिक एक मसला जिस तरह से होता है, उसको बैठ के हमारी सारी चीजें सॉल्व हुई।
2: दूसरी ओर सहब सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत ने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद अब कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे।
4: हमारी जो मेयर साहब के साथ सहमति बनी हुई है कि जो 10% है वो मेयर साहब की तरफ से क्लियर है कि हम देंगे, और इसे जो है AGM में ले जाना। जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो रोड स्वीपिंग स्टाफ है, उनको 4/9/14 नहीं लगता था, उसके लिए भी इन्होंने हम ईवर दिया कि वो भी हम जो है इसको कर देंगे। और साथ में स्पेशल लीव जो मिलती थी हमारे 15 डेज की, वो भी जो है इन्होंने हम ईवर ही है कि इसको भी हम दोबारा चालू कर दें। और जो हमारे 41 लोग टर्मिनेट किए गए हैं, उनको भी जो है मेयर साहब ने यहाँ से लिख के भेज दिया कमिश्नर साहब को, इनकी सेवाएं जो है कल से शुरू की जाए और कल से जितने भी सहायक कर्मचारी है वो अपने अपने कार्य पे जाएंगे।
2: गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से सफाई कर्मियों के हड़ताल के चलते शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार लगातार जारी है। इन चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। चंबा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले की 319 ग्राम पंचायतों में 3 चरणों में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियों के अलावा मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।
5: हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हर गांव के अंदर उपस्थित हैं। तो जो पोलिंग पार्टीज हैं जो कि 26 को, 28 को और 30 मई को अपने अपने स्टेशन पे जाके इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगी, तो जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग है, साथ में जो हमारे ARO हैं जो कि काउंटिंग के प्रोसेस को ओवरसी करेंगे, उनकी करंटली जो ट्रेनिंग है वो SDM लेवल पे इम्पार्ट की जा रही है। फाइनल ट्रेनिंग हमारी 24 तारीख को होती है, उसके बाद जो पार्टीज हैं वो अपना सामान मटेरियल लेके अपने पोलिंग स्टेशन के लिए मूव कर जाते हैं। पोलिंग स्टेशन पे मतदाता आते हैं के लिए भी जो बेसिक वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज हैं, रैंप की उपलब्धता प्लस बिजली पानी एक्सेट्रा, ये सब भी हर जगह पे सुनिश्चित कर लिया गया है।
2: उधर सिरमौर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 1641 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं,

0: जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में आयोजित आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के युग का सूत्रपात किया और पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण भी प्रदान किया।
1: राजीव गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें युवा सोच को मजबूत, उन्होंने युवाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, 18 साल की उम्र के युवा साथियों को वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि लोकतंत्र में वो चाहते थे युवाओं की भागीदारी दिया। उसके बाद महिलाओं को 73वां और 72वां संविधान संशोधन बिल लेकर महिला रिजर्वेशन की बात की।
0: इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ऑफ स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनाए गए मॉडल का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने शहरी विकास क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्द ही हिमाचल से शहरी विकास विभाग, नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक में शहरी विकास कार्यों का अध्ययन करने जाएगा और इन कार्यों से प्रेरणा लेकर इसके सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड के लिए केंद्र से प्रस्तावनाएं अनुमोदित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी है और मैदानी इलाकों के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऊना आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह हमीरपुर के नेरी में 41, सुंदरनगर में 39.9, मंडी में 38.8, सोलन में 36 और शिमला में 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल 22 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में आगामी 2 दिनों के दौरान आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने रेणुका जी बांध प्रबंधन पर विस्थापितों की मांगों को लगातार अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांध प्रबंधन ने NGT के आदेशों को दरकिनार करते हुए सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू किया और NGT की शर्तों को भी पूरा नहीं किया। योगेश ठाकुर ने कहा कि रेणुका जी बांध प्रबंधन विस्थापितों पर जबरन कई शर्तों को थोप रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2: रेणुका बांध में जो हमारे विस्थापित बाय इफेक्टेड जो हो रहे हैं, उनके साथ जो है पिछले 17 सालों से अनदेखी की जा रही है। तो हमारी मांग यही है कि NGT के मापदंडों को जो हमारा बांध प्रबंधक है उसको फॉलो करे, जो भी है कंडीशन है ये इसको हटाया जाए और बिना कंडीशनों के हमारी जो हाउसलेस के लिए जो भी हमें पैसा मिलना है वो बिना कंडीशनों को हमें मिले।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, कल से सभी सफाई कर्मी अपने काम पर लौटेंगे। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार जारी। पहले चरण के मतदान के लिए 24 व 25 मई को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कर्नाटक स्मार्ट सिटी के सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाएंगे। और प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी। ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से पार। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव और एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं देशगान।
4: धरती मां भगवती है, शक्ति है और अजय है। हमें शक्ति दो कि हम तेरा गुणगान कर सकें।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के मिलीजुली आवाजों में।

अभी आपने सुना अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाए इस गजल को। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सावरकोटी की आवाज में।

अभी आपने सुना सावरकोटी की आवाज में गाया ये पंजाबी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बाली ब्रह्म भट्ट सपना अवस्थी के मिले जुले स्वरों में।

अभी आपने सुना बाली ब्रह्म भट्ट सपना अवस्थी की आवाजों में गाया ये गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं इला अरुण गुरदास मान के युगल स्वरों में ये गीत।

fakey life, Ronaldo na baba. I don't like, apni to fakey life, Ronaldo na baba. I don't like, apni umar hai 22, thoda sa main hu wise, thoda sa bad hu, thoda sa main hu nice. Tension, tension, kyun leti hai jaane jaana? चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराना टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना चार दिन

सबरस कार्यक्रम में अभी आपने सुना इलारुण गुरदास मानव साथियों की आवाजों को। ये कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रो से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं उषा उत्तव साथियों की आवाजों में गाया ये गीत।

उषा उत्तव साथियों की आवाजों में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी श्रोता सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या व रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने

0: कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने

0: का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफील्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader

इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर फिल्माए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। इन्होंने बॉलीवुड में अपने अभिनय की शुरुआत 1999 में आमिर खान की मुख्य भूमिका वाली फिल्म सरफरोश से की थी। इसके बाद ये राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल, जो कि 1999 में जंगल 2000 और राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई MBBS 2003 में भी नज़र आए थे। मुंबई में आने के बाद इन्होंने टीवी धारावाहिकों में काम तलाशने की कोशिश की, पर कुछ खास सफलता नहीं मिली। इन्होंने एक छोटी फिल्म द बाईपास 2003 में इरफान खान के साथ उसमें काम किया था। 2002 से लेकर 2005 तक इनके पास ज्यादातर समय कोई काम नहीं था। इन्हें रहने के लिए चार अन्य लोगों के साथ फ्लैट साझा करना पड़ता था। साल 2004 इनके लिए काफी दिक्कतों वाला था। किराए के पैसे न दे पाने के कारण इन्हें अपने NST सीनियर से रहने की अनुमति मांगनी पड़ी और उन्होंने इस शर्त पर गोरेगांव के अपार्टमेंट में रहने की इजाजत दी कि वो उनके लिए भी खाना बनाए। 2009 में उन्हें देवडी के इमोशनल अत्याचार गाने में एक छोटे से रंगीला नाव के किरदार के रूप में काम मिला। इसी साल ये न्यूयॉर्क 2009 में भी दिखाई दिए, लेकिन इन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचान अनुषा रिजवी की पिपली लाइव 2010 से मिली थी, जिसमें इन्हें एक पत्रकार की भूमिका मिली थी। 2012 में ये प्रशांत भार्गव के पतंग द गाइड 2012 में दिखाई दिए। इस फिल्म को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव और टिब्रेका फिल्म उत्सव में दिखाया गया था। इसमें सिद्दीकी के कार्य को फिल्म समीक्षक रोजर एवर्ट ने काफ़ी सराहा था। इसके बाद ये फिल्म संयुक्त राष्ट्र और कनाडा में भी दिखाई गई और न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा से भी लोगों का इन पर काफ़ी ध्यान आकर्षित हुआ। सन 2012 में ही अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के दूसरे भाग में इन्हें प्रमुख भूमिका में लिया गया और इस फिल्म ने इन्हें एक उत्तम अभिनेता के रूप में स्थापित किया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर फिल्माए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलें फिल्मी और गैर फिल्मी। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर व जगजीत सिंह के युगल स्वरों में।

अभी आपने सुने जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गाई ये गज़ल। गज़लें फिल्में गैर फिल्में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के

अभी आपने सुना मुकेश व तानसिंह की आवाज़ों में गाई ये गज़ल। गज़लें फिल्मी गैर फिल्मी, इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति उमराव जान फिल्म से।

अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ को फिल्म उमराव जान में। गजलें फिल्मी गैर फिल्मी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से।

अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई ये गज़ल। गज़लें फिल्मी गैर फिल्मी समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से।

इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज में गाए इस गजल को। अभी श्रोता सुन रहे थे गजलें फिल्मी और गैर फिल्मी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रताप चंद शर्मा की आवाज में गाया ये लोकगीत।

अभी आपने सुना प्रताप चंद शर्मा की आवाज में गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं विक्रांत की आवाज में गाया ये लोकगीत।

अभी आपने सुना विक्रांत राणा की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ओम प्रकाश व साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, जोगेंद्र शर्मा की आवाज में गाए इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपकी परछाइयां फिल्म से।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया आपकी परछाइयां फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अमर फिल्म से।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये गीत। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अनामिका फिल्म से।

पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद फिल्म से ये गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: अभी आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में गाया आनंद फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मुकेश की आवाज़ में।

मेरा नाम जोकर इस फिल्म में अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ को। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले के युगल स्वरों में एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से।

0: इसी गीत के साथ हमारा आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते

हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद। अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।